सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 MHz पर ही आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार, सक संबत 1948, अश्विनी महीने की आज तीसरी तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की आज सितंबर महीने की 25 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 और 48 सेकेंड हुए है। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं राजेश दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज की पहली सभा में।

अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मान किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदक की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता, आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले चलिए आपको पहले जानकारी देते हैं हमारे आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:10 पर कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे भक्ति गीतों के कार्यक्रमों के साथ। 6:30 पर आप सुन पाएंगे वोमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स और 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार। आज का दिन कार्यक्रम आज आप सुन पाएंगे 7:05 पर और सवेरे 7:30 पर प्राइम मिनिस्टर 15 प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज, जिसे प्रस्तुत करेंगे अंकिता मित्रपांग से। और इस पे हमारे साथ स्पेशल गेस्ट रहेंगे किसावले पाव में, जो कि DFE है ASR LM के। सवेरे 8:00 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। नॉर्थ ईस्ट न्यूज का वक्त रहेगा सवेरे 8:30 पर शिलोंग के आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से आप सुन पाएंगे। सवेरे 8:40 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरों की रंगोली का आप जायजा ले पाएंगे और 9:00 आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन पाएंगे देश विदेश के खबरों में पुआर आंचलिक बातरी के जरिए। उसके पश्चात 9:15 पर आरंभ किया जाएगा स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सबसे पहले सुनवाएंगे खेलमा कार्यक्रम में खेलमा भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार है जानी लुसाई और उनके साथी। रांखोल कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे रांखोल भक्ति गीत और इसके गायक कलाकार है हाइसोन जोन रांखोल और उनके साथी। समय रहेगा 9:25 का। 9:35 पर आप सुन पाएंगे जयंता कार्यक्रम में जयंता भक्ति गीत और इसके गायक कलाकार है ईश्वरदीप शादाब और उनके साथी। और 9:45 पर हमारे आज की पहली सभा की अंतिम स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे बेते कार्यक्रम में बेते आधुनिक गीत, जिसके प्रस्तुतकर्ता रहेंगे एंगड़ी बेते और उनके साथी। सवेरे 10:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को शाम के 5:00 तक। और इसी बीच समाचार और मुख्य समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही दोपहर 2:00 मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे और उसके तुरंत बाद दोपहर समाचार। श्रोताओं, ये थी हमारे आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज दिन है शुक्रवार और माता संतोषी के भजन के साथ दिन की शुरुआत करने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए सुनते हैं ये पहला भजन।

दोस्तों, भक्ति गीतों के कार्यक्रमों में आप आनंद ले रहे थे संतोषी माता के प्यारे से भजन का। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग कैद रहे। अभी आप सुन पाएंगे वोमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स। इस कार्यक्रम के तहत चलिए सुनते हैं ये पहला गीत।

0: दोस्तों आप आनंद ले रहे थे ओमन सेंट्रिक फिल्म सोम्स का, ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की है और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया है। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में जारी इन मोटरसाइकिल रैलियों का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। भारत ने इसराइल फलस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए अपना दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ही आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले दोस्तों चलिए सुनते हैं आज की पोएम ऑफ द डे, और इसे कहा है अंकुश रजक ने।
2: নমস্কার, আমার নাম অঙ্কুশ শীল। আজ আমি আইজন লিটনের লেখা স্বাধীনতা কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি।
3: সোনার মতন ছেলি মাকে সেদিন ফেলে, অস্ত্র হাতে আধার রাতে লড়তে গেল, লড়তে গেল সাহস নিয়ে বুকে, শত্রু সেনার রুখে, শত্রু সেনার বেশ করেছে, বেশ করেছে, বেশ করেছে, দেশ করেছে মুক্ত, তাই তো দেশের নামে রাগে স্বাধীনতা যুক্ত। ধন্যবাদ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का दिन। सितंबर का महीना धीरे धीरे अपने अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ रहा है और आज है 25 सितंबर। इतिहास के पन्नों में ये तारीख विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और भारत के कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से जुड़ी हुई है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं 25 सितंबर का इतिहास। आज के दिन जन्मे महान व्यक्तियों और उन शख्सियतों के बारे में जिन्होंने आज हम याद कर रहे हैं। 25 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं में आज सबसे पहले है सन 1237 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ट्रीटी ऑफ यॉर्क पर समझौता हुआ और इस समझौते ने दोनों देश के बीच साझा सीमा के को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1639 में अमेरिका के कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। इस प्रेस ने आगे चलकर न्यू इंग्लैंड में पुस्तकों और अन्य मुद्रित सामग्री को प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1654 में इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते ने दोनों देश के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। आज के दिन सन 1955 में रॉयल जॉर्डनियन एयरफोर्स को आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया। इससे जॉर्डन की संगठित सैन्य विमान व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिला। 1981 में बेलिज संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। बेलिज को इससे कुछ ही दिन पहले 21 सितंबर 1981 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। 25 सितंबर को वो संयुक्त राष्ट्र का 156वां सदस्य बना। 1992 में नासा ने मार्स ऑब्जर्वर स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह, वातावरण, जलवायु और अन्य वैज्ञानिक विशेषताओं का ध्यान रखना था। यह स्पेसक्राफ्ट 25 सितंबर को लॉन्च हुआ था। हालांकि अगस्त 1993 में मंगल की कक्षा में प्रवेश से पहले इससे संपर्क टूट गया। सन 2006 में ईरानी मूल की अंशु अंसारी अंतरिक्ष यात्रा पर गई। वो पहली महिला स्पेस टूरिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुई और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंची। उनकी यात्रा ने महिलाओं और निजी अंतरिक्ष यात्राओं को लेकर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। सन 2008 में चीन ने शेंझो 7 एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। यह मिशन चीन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस मिशन के दौरान चीन ने अपनी पहली स्पेस वॉक पूरी की। दोस्तों, चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों चलिए अब जानते हैं उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म 25 सितंबर को हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हरियाणा के प्रमुख नेता चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था। वे किसानों और ग्रामीण समुदायों से जुड़े मुद्दों के लिए जाने जाते थे। भारतीय चिंतक और राजनीतिक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र के नंगल चंद्रभान गांव में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध एरोस्पेस इंजीनियर और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में हुआ था। वे 1972 में 72 से 1984 तक इसरो के चेयरमैन रहे और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनेता निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई। हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जानी मानी अभिनेत्री दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 के लुधियाना शहर में हुआ था। उन्होंने फिल्मों में टेलीविजन दोनों क्षेत्र में काम किया और अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किया। दोस्तों चलिए आप जानते हैं समय है उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करने का जिनका निधन 25 सितंबर को यानी आज के दिन हुआ था। अंग्रेजी दार्शनिक और वैज्ञानिक रोजर बैंक का निधन 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ। उनके निधन का वर्ष इतिहासकारों के बीच पूरी तरह निश्चित नहीं है। कुछ पुराने स्रोत 1294 बताते हैं जबकि आधुनिक शोध में 1292 भी दिया जाता है, इसलिए इसे निश्चित 1994 के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं। भारत की शुरुआती महिला चिकित्सक में शामिल डॉक्टर रुक्मणी बाई का निधन 25 सितंबर 1955 को हुआ था। वे महिलाओं के शिक्षा अधिकारों और सामाजिक सुधार से जुड़े अपने कार्य के लिए भी जानी जाती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेना का निधन 25 सितंबर 1990 को हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी कई कार्य किया। प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार कवि और साहित्यकार कन्हैया लाल नंदन का निधन 25 सितंबर 2010 को नई दिल्ली में हुआ था। वे नवभारत टाइम्स सहित कई प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे जुड़े रहे और हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों आज बात करेंगे इस खास दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में। इससे पहले चलिए सुनते हैं प्यार से ये गीत।

दोस्तों चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में। हर साल 25 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। यह दिन फार्मासिस्ट को के योगदान और हेल्थ केयर सिस्टम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझाने और सम्मान देने का अवसर है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की शुरुआत इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी FIP के की ने की थी। सन 2009 में FIP काउंसिल ने 25 सितंबर को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया और सन 2010 से इसे हर वर्ष मनाया जा रहा है। 25 सितंबर की ही तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन सन 1912 में FIP की स्थापना हुई थी। दोस्तों फार्मासिस्ट केवल दवा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो मेडिसिन की सही जानकारी रखने वाला हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है। फार्मासिस्ट मरीजों को दवा की सही मात्रा, सही समय, संभावित साइड इफ़ेक्ट्स और दवाओं के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में समझाते हैं। वे दवाओं के उचित उपयोग और गलत या अनावश्यक दवा के इस्तेमाल को कम करने में भी मदद करते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का उद्देश्य लोगों को यह समझाना भी है कि बेहतर हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर्स, नर्स और फार्मासिस्ट सहित पूरी हेल्थ केयर टीम का सहयोग ज़रूरी है। सन 2026 में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम है एम्पावरिंग फार्मासिस्ट फॉर हेल्थियर फ्यूचर्स, यानी फार्मासिस्ट को सशक्त बनाकर बेहतर और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करना। आज की तारीख हमें एक तरफ इतिहास के पुराने समझौते और महत्वपूर्ण घटनाओं को याद दिलाती है तो दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस से लेकर मार्स ऑब्जर्वर और शेंजू 7 जैसी घटनाओं में के माध्यम से यह भी दिखाती है कि इंसान ने ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में कितनी लंबी यात्रा की है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सही मेडिसिन, सही जानकारी और सही सलाह बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों ये थी हमारी आज की 25 सितंबर की कहानी। कल हम आपके समय फिर से हाजिर होंगे कल के दिन की ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इतिहास को पढ़ते रहिए, जानते रहिए और अभी सुनिए एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब वक्त है एक खास कार्यक्रम का। अभी आप सुन पाएंगे प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज, जिसे प्रस्तुत करेंगे अंकिता मथरपंग से। इस कार्यक्रम में हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है किसा वाले पाँव में, और प्रोग्राम आधारित है दीनदयाल अंत्योदय योजना पर। अंडर वो किसा वाले पाँव में जी हमारे DFE है ASRLM के। चलिए सुनते हैं इस प्यार से कार्यक्रम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता मिथर फांगसा और एक बार फिर से महीने के आखिरी शुक्रवार को लेकर प्रस्तुत हूं कार्यक्रम पीएम 15 पॉइंट्स प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज। श्रोताओं, हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन सब के कल्याण के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीम्स, योजनाएं, पहले चलाए जा रही हैं, जिसके बारे में हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं। आज एक नए स्कीम को लेकर हम बात करेंगे जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदया योजना, जिसको डे एनआरएलएम नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के बारे में भी हम बात करेंगे। श्रोताओं, इस स्कीम से जुड़ी जानकारियों को साझा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आइए हम उनका परिचय करा दें। आप हैं आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल एक्सपर्ट यानी कि डीएफई स्किल्स की सुई जेमे जी। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में अबाउट दीनदयाल अंत्योदया योजना डे एनआरएलएम, इसके बारे में हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे। इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं?
1: नमस्कार सभी को। एक्चुअली डे एनआरएलएम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लॉन्च हुआ था 2011 में। हमारा डी एन आर एल एम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द पॉवर्टी थ्रू एसेसिंग लाइवलीहुड एक्टिविटीज और प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज के ऊपर में, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देके वो लोग को थोड़ा एम्पावर करना है।
0: जी मैम,
1: हम लोग का डी एन आर एल एम से हम लोग का ऐसा असम में ऐसा है कि असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन
0: जी,
1: तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। और एस आर एल एम से पहले ये पहले से भी ये स्कीम था एस जी एस वाई बोल के,
0: अच्छा,
1: स्वर्ण जयंती ग्रामीण कौशल्या योजना
0: जी,
1: कौशल्या नहीं रोजगार योजना, तो ये पहले से ही ऑनगोइंग था
0: जी,
1: तो अभी इसको कन्वर्ट किया, मतलब रीनेम किया है डे एन आर एल एम में। तो डे एन आर एल एम अभी हम लोग का असम में एस आर एल एम बोलता है, असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो हम लोग ये अभी फिलहाल एस एस जी मेम्बर्स, रूरल एस एस जी मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंस्टीट्यूशन में लाना है। फिर एस एस जी के बाद हम लोग 10-15 एस एस जी मिलके और एक विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो वी ओ बोलता है उसको एस एस जी, सब 10-12 एस एस जी मिलके हम लोग एक वी ओ, फिर वीओ लेवल में हम लोग इंस्टीट्यूशन फिर बांध के दे देता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है। और वीओ के बाद फिर हम लोग जीपी लेवल, जीपी मतलब हम लोग का यहाँ में कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलता है,

0: कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में 10-15 वीओ को, फिर एक क्लस्टर लेवल में हम लोग बांधा दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये है हम लोग का डी एन आर एल एम का काम करने का प्रोसेस है, यही है।
1: अच्छा
0: थ्रू सी एल एफ लेवल हम लोग एस ए जी लोगों को, जैसे अभी वीओ बताया, एस ए जी बताया, सी एल एफ बताया, वो लोग को अभी हम लोग फिनेंशियल असिस्टेंस देता है। जैसे
1: अच्छा
0: आर एफ रिवॉल्विंग फंड, रिवॉल्विंग फंड ए वन टाइम ग्रांट असिस्टेंस है जो हम लोग सेंट्रली, ये हम लोग सब एस ए जी को दिया जाता है 25,000 करके। हाँ, और ये है ग्रांट आर एफ रिवॉल्विंग फंड, और एक है सी आई एफ फंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जो सी एल एफ लेवल में 50% मेंबर्स को हम लोग दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये सी आई एफ ये लोन है, लेकिन आर एफ जो है ये ग्रांट है, वन टाइम ग्रांट।
1: क्या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना का ही एक ये पार्ट है?
0: जी हाँ मैडम, ये डी एन आर एल एम का, ये डी डी यू जी के वाई भी डी एन आर एल एम का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा डी डी यू जी के वाई डी एन आर एल एम का अंदर में ही है। हम लोग का डी डी यू जी के वाई जो है, ये ज़्यादातर हम लोग का जो एस एच जी मेम्बर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस एच जी मेम्बर्स रूरल वीमेन का अंदर में जो भी यूथ्स है, या यूथ्स या ड्रॉप आउट, नहीं तो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट लोगों के लिए ये प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग दिया जाता है।
1: और मैम, हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है रिमोट एरियाज है, गांव के एकदम अंदर के जो एरियाज हैं
0: जी
1: उसमें इस कैसे ये स्कीम काम करती है, जहां लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर इतना अवेयर नहीं है, अनजान है?
0: देखिए, हम लोग का एन आर एल एम में जो जो भी एस एच जी मेम्बर्स होता है बहुत रिमोट एरिया में होता है, और हम लोग जितना सकता ग्रास रूट लेवल तक हम लोग हाउस टू हाउस, डोर टू डोर हम लोग विजिट करके पहले एस एच जी में फॉर्मेशन किया जाता है। उसका बाद जो एस एच जी वी ओ सी एल एफ है, वो इंस्टीट्यूशन को हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए विलेज लेवल में हम लोग का कम्युनिटी केडर्स, जो हम लोग को हैंड होल्ड करने के लिए जो कम्युनिटी केडर्स है, वो लोग का सहारा लेके हम लोग रूरल यूथ्स लोग को भी आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू सी एल एफ लेवल में अवेयरनेस दे के और वी ओ लेवल में अवेयरनेस दे के, कि डी डी यू जी के वाई हम लोग का प्लेसमेंट जो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा और अपॉर्चुनिटी है यूथ लोग का, ड्रॉप आउट लोग के लिए 3 मंथ ट्रेनिंग दिया जाता है अलग अलग ट्रेड एंड अलग अलग सेक्टर का ऊपर। जैसे कि किसी यूथ्स को इंटरेस्ट है स्विंग मशीन ऑपरेटर में, तो वो लोग के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी देता है। साथ ही साथ 3 मंथ्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन दिया जाता है, उसका बाद फिर वो लोग को प्लेसमेंट, जो ज़्यादातर अभी तक हम लोग का प्लेसमेंट हुआ है पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, तमिलनाडु, ऐसा करके दिया है। फिर लड़का के लिए दूसरा ट्रेड होता है एफ एन बी, जैसे कि फूड एंड बेवरेज, जो हॉस्पिटलिटी का सेक्टर है।
1: जी
0: फिर और भी है, हेल्थ का ऊपर में भी है, जी डी ए बोलता, वो सब भी ट्रेनिंग के लिए हम लोग ये सब मोबिलाइज करता है थ्रू हाउस टू हाउस मोबिलाइज करके। और कम्युनिटी केडर्स जो, जैसे मैंने बोला हैंड होल्डिंग का जो हम लोग केडर्स होता है सब जीपी लेवल में, तो वो लोग का थ्रू में करवा देता है रिमोट एरिया।
1: जी मैम, तो हमारे ज़िले में क्या क्या प्रकार के एक्टिविटीज़ प्रेजेंटली, क्या क्या प्रकार के काम किए जा रहे हैं इस स्कीम के अंदर?
0: मैं सबसे पहले एनआरएलएम का, एसआरएलएम का एक्टिविटीज थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी। एसआरएलएम में हम लोग का अभी फिलहाल पोषण माह, 9 सितंबर से लेके अक्टूबर तक हम लोग का पूरा महीना पोषण माह का प्रोग्राम चल रहा है। अभी पोषण माह मतलब जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है या बच्चा है, इन कन्वर्जेंस विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग का कन्वर्जेंस मीटिंग ओपनिंग भी हो गया है, काउंसिल में हुआ था। तो अभी पोषण माह का प्रोग्राम अभी ग्रास रूट लेवल में चल रहा है, जो कैसे न्यूट्रिशन हेल्थ को लेके अवेयरनेस, वो मतलब वो सब बेनिफिट होगा और क्या खाना है। वैसे भी अभी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस जो वेजिटेबल्स है वो सबसे हम लोग को कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये सब अवेयरनेस चल रहा है इन कन्वर्जेंस विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट।
1: ओके मैम,
0: फिर दूसरा एक्टिविटीज़ डी एन आर एल एम का अंदर है पी एम एफ एम ई स्कीम बोल के एक जो है, ये भी कन्वर्जेंस है।
1: अच्छा

0: फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का अंदर में आता है. तो ये हम लोग PMFME में हम लोग बैंक लोन दिलाता है जो लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज काम कर रहा है, जैसे कि दुकान देना हो, कपड़ा बनाना हो, या अचार मेकिंग, पापड़ मेकिंग, वो सब लोग का वो नॉन फार्म एक्टिविटीज का ऊपर में हम लोग मशीन दिलाता है थ्रू PMFME का स्कीम. मशीन वो लोग को मशीन मिल जाता है. अभी तक का लगभग 30 बेनिफिशियरीज को ऑलरेडी बैंक से सेंक्शन कर दिया है. और सेकेंड में बोलना चाहूँगी DDU GKY का. अभी पहले DDU GKY 1.0 चल रहा था, अभी 2.0 मतलब वर्जन बढ़ गया है. अभी 2.0 का वर्जन में अभी अपकमिंग दियुंगब्रा में एक FIS सेंटर खोला है, फाउंडेशन फॉर इंटीग्रेटेड सपोर्ट बोल के जो सेंटर खोला है. अभी बाय अक्टूबर लास्ट वीक तरफ में हम लोग का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा. उसके लिए फील्ड लेवल में यूथ आइडेंटिफिकेशन, यूथ मोबिलाइजेशन, यूथ अवेयरनेस थ्रू CLF चल रहा है, अभी चालू है. तो वो सेंटर में अभी गेस्ट सर्विस एसोसिएट का है, FNB फूड एंड बेवरेज हॉस्पिटलिटी का सेक्टर में आता है. तो अभी नेक्स्ट अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, बैच कमेंस हो जाएगा.
1: जी जी मैम. मैम ये जो आपने स्कीम के बारे में बताया, ये स्कीम्स, इन स्कीम्स को अवेल करने के लिए जो एप्लीकेंट्स है वो लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना मैम?
0: जी जी.
1: तो मैं यही पूछना चाहूँगी मैम कि कितना आसान होता है लोन के लिए आपके डिपार्टमेंट के थ्रू, कितना सुविधा मिलता है?
0: अच्छा, ये एक्चुअली हम लोग का SRLM का अंदर में ये अलग वर्टिकल है, इसको फिनेंशियल इंक्लूजन बोलता है, FI. तो इसमें हम लोग का जितना भी SHG मेंबर्स जो अपना एक्टिविटीज़ काम कर रहा है रिलेटेड टू, जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक फार्म का, फार्म हो या नॉन फार्म हो, हम लोग पूरा कन्वर्जेंस के साथ पूरा पूरा मिल के, डिपार्टमेंट भी मिल के अपना लेवल में सब सपोर्ट करते हैं SHG बैंक लोन के लिए. तो बैंक पहले शुरुआत में थोड़ा इतना थोड़ा हम लोग का परसेंटेज कम था, लेकिन अभी हाँ सबको मतलब ज़्यादातर 80% SHG मेंबर्स या ग्रुप लेवल को अभी सुविधाएं बैंक का तरफ से भी बहुत अच्छा से मिल रहा है.
1: तो इसका लोन लेने का जो प्रोसीजर कैसा होता है मैम?
0: प्रोसीजर तो हम लोग के लिए FI रिलेटेड के लिए, इसके लिए भी हम लोग अलग सा कैडर्स रखा हुआ है विलेज लेवल में, बैंक मित्रा और बैंक सखी बोलता है.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो वो लोग का थ्रू से हम लोग क्रेडिट लिंक का ऊपर में अवेयरनेस देता है, लिटरेसी कैम्प भी देता है, बैंक लिटरेसी कैम्प. और वो लोग का सभी हम लोग का ऐसा टारगेट दिया है कि सब मेंबर्स, जितना भी SHG मेंबर्स है वो लोग को इंश्योरेंस करवाना है. जी, तो थ्रू हम लोग का कम्युनिटी कैडर्स का तरफ से PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन, ये सब जितना भी है सबको करवाना है. ये हम लोग करवा रहा है, अभी भी चालू है, जिस जिसका मतलब अभी KYC नहीं हुआ, ये सब अभी चल रहा है. और हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से SHG लोगों को लोन मिलना इसलिए आसान हो जाता है.
1: इस स्कीम के चलते मैम कौन कौन सी, आपने पहले भी बताया था कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कौशल विकास को लेके ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेके आप लोग कराते हैं, और आप अगर विस्तार में बताएं.
0: सबसे पहले हम लोग का SHG औरत लोगों के लिए है RCT का, हम लोग का SBI RCT हफलों में है.
1: जी,
0: हाँ, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग करवाता है शॉर्ट टर्म के लिए, जो लोग अपना मतलब ट्रेनिंग लेके खुद से जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है या एंटरप्रेन्योर के लिए खोलने मांगता, ऐसा होने से वो लोग SBI RCT का थ्रू वो लोग ट्रेनिंग ले सकता है. तो अभी बहुत हम लोग ऐसे जो मेंबर्स ने लिया भी है, जैसे गोट्री का हो गया, पोल्ट्री हो गया, फार्म हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, और कोई कोई तो अभी ट्रेनिंग लेके अभी अपना खुद का एंटरप्रेन्योर भी खोल दिया है SHG मेला का थ्रू. हाँ, हम लोग का SHG मेला भी होता है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी.

0: हर साल बोहागी मेला, आसोमी मेला वो सब होता है, वो सब में हम लोग जितना सके हो सके तो मार्केट लिंकेज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं।
1: कर रहा है।
0: हाँ, और दूसरा हो गया केवीके का तरफ से भी हम लोग को शॉर्ट टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स देता है केवीके हम लोग का, वो भी हमारे लिए कन्वर्जेंसी है। हाँ, और पशु सखी कृषि सखियों को वो लोग पूरा एग्रीकल्चर और केवीके का तरफ से भी पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है।
1: जी मैम।
0: हाँ, और एक हो गया डीडीयू जीकेवाई हो गया, हम लोग का सेंटर अलग अलग होता है। ISMO होने से हम लोग का होजाई में जाना पड़ता है। अभी रिसेंटली जो ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाला है वो दियुंगब्रा में होगा, और दूसरा है हैलाकांडी काचार और कामरूप मेट्रो में है। तो हम लोग का यूथ लोगों को उधर में अपना अगर इंटरेस्ट है तो वो लोग को बाहर थोड़ा निकलना पड़ेगा वो
1: वो तो
0: कोर्स
1: करना ही
0: अवेल
1: पड़ेगा।
0: करने के लिए।
1: जी जी मैम। मैम, इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरीज है, जिन जो लाभार्थी है, जिनको लाभ हुआ है इस स्कीम के चलते, क्या ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे?
0: सक्सेस स्टोरी हम लोग का दिमाहासाओ में सक्सेस स्टोरी है जो केवीके से ट्रेनिंग मिला है हम लोग का, उसका नाम है, हम लोग सुंगते दी बोलता है, लाल ठिंग किम सुंगते। उसने केवीके से बहुत पहले केवीके से ट्रेनिंग मिला हुआ था, अचार का भी पिकल का भी और मशरूम बनाना जूस मेकिंग ये सब का, और RCT से भी उसको ट्रेनिंग मिला है। साथ में अभी अपना PMFME का भी वो उसने मिला है, मशीन मिला उसको जूस मेकिंग का। और सुंगते दी का पहले का जो कंडीशन है उससे अभी कंपेयर करने से वो बहुत खुश है अभी वो सब में, और मेला हर मेला में पार्टिसिपेट कर रहा है अभी भी हम लोग का साथ में। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट रिलेटेड जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, जूस हो गया, लोकली जो अवेलेबल है उसी से वो अपना लेवल में बना लेता है। जिंजर जूस, जिंजर का पाउडर, टर्मरिक पाउडर वो सब पूरा घर में ही अवेलेबल है वो, तो उसका सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छा रहा वो। अभी
1: जी
0: उसका सोर्स ऑफ इनकम मार्केट लिंकेज में हम लोग का थोड़ा दिक्कत है, तो
1: ओके
0: जितना हो सके हम लोग जो प्लेटफॉर्म देता है मेला का प्लेटफॉर्म में वो उधर में बहुत सेल हो जाता है।
1: जी
0: अभी
1: मैम।
0: वो अभी लखपति दीदी में भी वो इन्वॉल्व हो गया,
1: जी
0: क्योंकि हम लोग को SHG मेंबर्स लोग को जितना हो सके लखपति दीदी की ओर बढ़ रहा है, मतलब
1: जी मैम।
0: हाँ थ्रू एक्टिविटीज। ऐसा है कि हम लोग को बोला गया स्टेट लेवल से कि हर SHG मेंबर्स को अपना एक्टिविटीज को बढ़ाना है थ्रू लोन लेके, CIF जो RF जो बोला वो सब असिस्टेंस लेके अपना एक्टिविटी को बढ़ाना है और सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा
1: करना
0: बढ़ाना
1: है।
0: है करना है। तो इसलिए हम लोग ट्रेनिंग भी वो लोग का हिसाब से जो जिसमें इंटरेस्ट है उसका ऊपर में हम लोग अवेयरनेस देता है। तो जितना हो सके हर साल में एनुअल वो लोग का रेवेन्यू जो है 1 लाख तक होना है।
1: आता है।
0: अभी तक हम लोग का रिपोर्ट में आया है कि 127 लखपति दीदी हो चुका है।
1: हम लोग का दिमासा
0: हाँ हाँ
1: डिस्ट्रिक्ट में
0: दिमासा डिस्ट्रिक्ट में, और सब वो भी सब SHG वुमेन।
1: वुमेन ना। चलो, बहुत अच्छी बात है मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग का जो डिपार्टमेंट है कितना अच्छा काम कर रहा है टू एम्पावर वुमेन एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
0: यस
1: इसके
0: यस
1: लिए आपको बहुत बहुत बधाई है
0: थैंक यू सो
1: मैम।
0: मच।
1: जी मैम। अगर इस स्कीम DDU GKY हो या दीनदयाल अंत्योदय योजना, दे NRLM, इस स्कीम को अवेल करने के लिए सिंपलेस्ट वे अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो क्या होगा वो?
0: सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग का हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए हम लोग का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर GP में वर्टिकल वाइज, जैसे कि हम लोग का एक वर्टिकल होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए,
1: जी
0: बैंक मित्र कम्युनिकेटर्स रखा हुआ है,
1: जी
0: बैंक मित्र हर बैंक रिलेटेड में वो सपोर्ट करेगा,
1: करेगा।
0: हैंड होल्ड करेगा।
1: जी
0: और एक है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग सीआरपी

0: ईपी बोलता है, वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेटर्स ही है, सीआरपी ईपी बोलता है, जो जैसे कि जीएसटी बनवाना हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना हो, या नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज में आगे बढ़ाने के लिए वो लोग हैंड होल्ड सपोर्ट करता है हम लोग का सीआरपी ईपी।
1: अच्छा,
0: फिर और एक हो गया लाइवलीहुड एक्टिविटीज का ऊपर में सपोर्ट करने के लिए हम लोग का कम्युनिटी केडर्स का नाम है पशु सखी और कृषि सखी, ये भी हर विलेज लेवल में वो लोग हैंड होल्ड करने के लिए सब वो करता है।
1: अच्छा।
0: और जैसे स्किल ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग ने पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, हर क्वार्टरली कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सभी केडर्स को, बैंक मित्र हो गया, सीआरपी ईपी हो गया, पशु सखी, जीविका सखी, सभी केडर्स लोगों को हम लोग ने हर क्वार्टर में वो लोग को कैपेसिटी ट्रेनिंग दिया हुआ है, डीडीयू जीकेवाई यूथ्स का तक रीच आउट करने के लिए।
1: अच्छा।
0: तो अभी अवेयरनेस भी होता है थ्रू वीओ लेवल में, विलेज लेवल में। तो ऐसे ही हम लोग कैडर्स का थ्रू हम लोग को पूरा विलेज लेवल, मतलब ग्रास रूट लेवल, जहाँ जहाँ बस्ती दूर है, या हम लोग का तो ऐसा है कि एक बस्ती में हाउस होल्ड 12 हाउस होल्ड 13 हाउस होल्ड ऐसा भी होता है, और रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए भी थोड़ा चैलेंजेस होता है।
1: चैलेंजिंग होता है।
0: हाँ
1: जी मैम।
0: हाँ चैलेंजेस होता है। और फिर भी हम लोग अभी भी कोशिश में है कि जितना हो सके रूरल यूथ्स लोगों का अभी रजिस्ट्रेशन चालू है विलेज लेवल में, उसको
1: जी
0: हम लोग कौशल पंजी रजिस्ट्रेशन बोलता है।
1: कौशल पंजी
0: हाँ
1: रजिस्ट्रेशन
0: रजिस्ट्रेशन, हाँ
1: कैसे?
0: केपी रजिस्ट्रेशन, ये ऑनलाइन होता है। वो लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस हो गया, डिटेल्स हो गया, आधार, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ, और कहाँ से है, क्योंकि डीडीयू जीकेवाई का हम लोग ऐसा है रूरल यूथ्स होने से भी 15 to 35 तक ही हम लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले
1: एज
0: सकता
1: लिमिट
0: है।
1: है
0: हाँ
1: मतलब।
0: एज लिमिट है, तो वो सब को वो सब अवॉइड करने के लिए हम लोग एक पोर्टल
1: पोर्टल
0: दिया हुआ है केपी
1: जी
0: रजिस्ट्रेशन, तो उसका थ्रू से हम लोग को पता चल जाता है।
1: जी जी मैम। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनको आपके दी गई इन जानकारियों से बहुत लाभ हो, हम यही आशा करते हैं। तो एन अवेयरनेस मैसेज मैम आपकी ओर से आप क्या बोलना चाहेंगी?
0: मैं तो यही एडवाइस करना चाहूँगी कि हम लोग का दिमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट का अंदर में जितने भी एसएचजी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या यूथ्स ऑलरेडी ड्रॉप आउट है, हाँ वो लोग को यही आशा करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके आप लोग ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए आप लोग आगे बढ़ने के लिए अपना से थ्रू ये मीडियम से भी। वैसे तो हम लोग बस्ती लेवल में तो कर ही रहे हैं, और अभी के लिए बहुत अच्छा खबर है, जितना भी यूथ्स है अभी अवेल कर सकता है। अक्टूबर मंथ में हम लोग दियुंगब्रा में एक स्किल सेंटर खोला है, 3 मंथ्स का फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा, फ्री ट्रेनिंग, खाना, लॉजिंग, रहने का सब फ्री है, उसमें कंप्यूटर बेसिक भी सिखाया जाएगा, कंप्यूटर बेसिक सॉफ्ट स्किल बोलता है, जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीखा जाएगा।
1: सिखाएगी।
0: हाँ फिर उसमें हॉस्टल रहने का भी सब फ्री में आप लोग को मिलेगा,
1: जी
0: तो उसके लिए आप लोग अगर अवेल करने मांगता होने से आप लोग थ्रू हम लोग का कैडर्स, नहीं तो जो भी ब्लॉक ऑफिस में डायरेक्टली आके आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
1: तो मैम आप,
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा।

0: पान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
3: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26

0: इसमें 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
4: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
5: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
6: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
7: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
9: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे देशभक्ति गीतों के कार्यक्रमों को। चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे सुरों की रंगोली कार्यक्रम अब से कुछ देर में। और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शैलेंद्र सिंह के गाए कुछ बेहतरीन गाने।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है

0: बेसब्री से इंतजार। दोस्तों कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पौर आंचलिक बातोड़ी FM 100.2 MHz पर ही आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे हमारे स्थानीय भाषाओं की सबसे पहली कार्यक्रम में खेलमा कार्यक्रम, और इसमें खेलमा भक्ति गीत आपको सुनवाएंगे जानई सिंह लुसई और उनके साथी।

दोस्तों आप सुन रहे थे खेलमा कार्यक्रम में खेलवा भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार थे जानिंग लोसाई और उनके साथी। अभी आप सुन पाएंगे रांखोल कार्यक्रम में रांखोल भक्ति गीत, और इसके प्रस्तुतकर्ता रहेंगे हाई सोनजोन रांखोल और उनके साथी। श्रोताओ आप सुन रहे हैं FM 88.2 MHz पर आकाशवाणी हाफ लॉन्ग।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रांखोल कार्यक्रम में रांखोल भक्ति की, जिसके गायक कलाकार थे हाइसवन जोन रांखोल। और उनके साथ ही अभी आप सुन पाएंगे जनता कार्यक्रम में जनता भक्ति गीत, और इसके प्रस्तुतकर्ता है ईश्वर सदा। पर उनके साथ ही श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का हाफ केंद्र FM 100.2 MHz पर।

दोस्तों अभी आप सुन पाएंगे हमारे आज की स्थानीय भाषा के अंतिम कार्यक्रमों में बेते कार्यक्रम, और इसमें एंगड़ी बेते और उनका साथी प्रस्तुत करेंगे बेते आधुनिक गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के अंतिम कार्यक्रमों में बेते कार्यक्रम। इसमें एंगेडी बेते उनके साथ ही प्रस्तुत कर रहे थे बेते आधुनिक गीत। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इसी के साथ ही आपके दोस्त राजेश को दीजिए इजाज़त। आगे आपके साथ रहेंगे अंकिता मित्रपांग से। नमस्कार, आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रमों को।
1: हेलो
2: हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई ना, बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई।
1: जी जी

0: से ही पानी हुआ है, गेट तो अंदर से ही खुले सर।
1: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
0: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
1: अच्छा, काम में बिजी रहे।
0: जी जी।
1: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
1: गाने की बोल
0: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप गाने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बटुहिया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।

0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको? हाँ
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है। गुंजा और चंदन का रोल, जब आखिरी माह आ जाती है ना, आखिरी माह का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर के क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है।

0: 40 इंच बारिश हुई है, परके 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर, बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
1: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती हैं वहाँ पर?
0: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713 और जो सरबती गेहूं रहते हैं ना सर, उसमें मैं पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूं और हमारे क्षेत्र का गेहूं सर।
1: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
0: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
1: अच्छा
0: जी,
1: मतलब जरा विस्तार से बताएं
0: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
1: अच्छा, क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
0: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
1: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
0: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और एक महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
1: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
0: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा मतलब कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर, मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
1: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
0: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
1: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
0: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
1: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
0: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
0: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और गाने के बोल हैं, मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
1: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
0: जी
1: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी,
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नग में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात
0: शुक्रिया।
1: करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
1: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
0: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
1: बिल्कुल दुआएं, बताइए।
0: फिल्म का नाम है धरती।
1: अच्छा,
0: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
1: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
0: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
1: जी जी।
0: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
1: जी जी जी।
0: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
1: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
0: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
1: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
0: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: जी आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गाँव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दूध पथरी है यहाँ, हमारा वो इलाका है वहाँ नजदीक है, इस गांव से बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये कुकवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपने जी है ना, ये भोपाल के पास में ही है जी, मान लीजिए।

0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जो रोड गए ना, जहाँ पर है जी, पास में पड़ता है अपना गांव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके
1: आप
0: गांव
1: बता
0: की
1: जी,
0: क्या हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, हमने सुनो।
1: हाँ, लेट ही चल रही है अभी तो।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है,
0: हाँ, तो तैयारियां वैयारियां चल रही हैं?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा,
1: सर जी पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो,
0: और अभी
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका?
0: अच्छा,
1: नाम ले
0: ऐसा। सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट होगा उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा रहा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजयपा, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजयपथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मन चाहे प्रोग्राम में इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका

0: करने आते हैं सर।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
0: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
1: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
0: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुँच पाता है सर।
1: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
0: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
1: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: आज की 2 मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर हैं हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। लीजिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणपति स्तुति से।

पृथ्वी गंधर्व की आवाज में विक्की नागर की रचना और सुदीप बैनर्जी की बनाई धुन पर अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग।

0: मिला तू इस एल्बम का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार अपूर्व थे।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरद गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
4: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
5: है ना, बोलो, बोलो।
4: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
6: कुछ लिखा
4: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। जिंदगी की जुबान इस एल्बम का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। संदीप गुप्ते ने इसे लिखा है, महेश खानोलकर ने इसे संगीतबद्ध किया है और आवाज है पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
4: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
3: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
5: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। द मॉर्निंग सन इस एल्बम से अब आपको गजल सुनवाते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गजल के रचनाकार हैं रविंद्र जैन और धुन भी रविंद्र जैन की।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
3: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। खिलेश शर्मा ने इस गीत की रचना की है, संदेश सांडिल्य ने धुन बनाई है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

चित्रा सिंह की गाई गजल। सुदर्शन फकीर का लिखा गीत।

0: द लेटेस्ट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह गजल एल्बम से ये गजल आपको चित्रा सिंह की आवाज में हमने सुनवाई। गीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, सुदर्शन फाकिर।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
0: तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, आवाज शान की, राम संपत का संगीत।

रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं, इब्राहिम अश्क की रचना। अली घनी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है, हंसराज हंस की आवाज है, एल्बम का नाम झांझरिया।

अली गनी का संगीत पर किया गीत हमने आपको सुनवाया हंसराज हंस की आवाज में झांझरिया एल्बम से, और ये गीत बना कार्यक्रम रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति। इसी के साथ दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तरंग। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी।

0: विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत 100 डेज फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। दिलीप ताहिर का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की पुण्यतिथि पर हम यादों की महफिल कार्यक्रम में उन्हें याद कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए गीत। अगला गीत, हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है, नौशाद ने संगीतबद्ध किया है, गाया है एसपी बालसुब्रमण्यम ने। तेरी पायल मेरे गीत फिल्म का नाम।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को। रोजा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और ए आर रहमान ने संगीतबद्ध किया है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
5: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
7: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
5: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। एसपी बालासुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अगला गीत समीर की बोल, आनंद मिलिंद का संगीत, फिल्म का नाम प्रेम कैदी।

0: विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: 10, 9, 8, 7
3: हम आपके हैं कौन, ये है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजें।
4: 2, 1 लेट्स स्टार्ट द फन।
3: रविंद्र रावल का लिखा गीत है राम लक्ष्मण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
5: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
4: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस वक्त साजन फिल्म का गीत, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

पत्थर के फूल फिल्म से गीत अभी हमने आपको सुनवाया। अगला गीत सुनवा रहे हैं हमसे है मुकाबला फिल्म से। पीके मिश्रा के का लिखा गीत है, या रहमान का संगीत है और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़, साथ ही पल्लवी और उदित नारायण ने साथ दिया है।

एसपी बालसुब्रमण्यम, पल्लवी और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीके मिश्रा ने इसे लिखा था, एआर रहमान का संगीत था। हमसे है मुकाबला, ये था फिल्म का नाम। अब है कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैंने प्यार किया। इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: इसी गीत के साथ यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को याद करते हुए उन्हीं के गीत सुनाए कार्यक्रम यादों की महफिल में।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन रहे थे श्रोताओं। ये प्रसारण पुनः आप सुन पाएंगे समाचार के बाद। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और 4th में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत

0: भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपेई के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए श्रोताओं, पुनः आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित।
2: जी हाँ श्रोताओं, ये हमारा जो प्रश्न है इसके बारे में आप ही को बताना है कि क्यों नहीं मिलता प्यार सभी को जिंदगी में। भेज दीजिए आपके कमेंट्स, हमें इंतजार है आपके संदेशों का। और ये बताइए कि अब जो गीत सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, किनकी आवाजें हैं इस गीत में और फिल्म का नाम भी आप बताएंगे। और ये भी बता दीजिए कि जो पूछा जा रहा है ना इस गीत में कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बताइए, लिख भेजिए अपने जवाब

0: धर्मात्मा फिल्म का गीत है, लेकिन आगे आपको बताना है कि किन की आवाजें हैं।
1: तुमने किसी से कभी प्यार किया है?

जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के कमेंट्स आ गए हैं। हमने जो पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और किन्होंने गाया है, सभी ने सही जवाब दिया है। धर्मात्मा फिल्म का गीत है। मुकेश और कंचन की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मैं फिरोज खान साहब को स्टाइलिश आइकन कहूंगा। ये हमारे एक श्रोता का कहना है कि उनकी मस्त चाल, संवाद बोलने का दिलकश अंदाज, काउबॉय की इमेज वाले फिरोज खान साहब के क्या कहने। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान जी की अभिनय क्षमता बड़ी गहरी है, रोमांटिक, गंभीर, कॉमेडी, स्टाइलिश, सभी कुछ उसकी उनकी फिल्मों में पाया जाता है। उनको शत-शत नमन। बिल्कुल। एक और श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान हिंदी सिनेमा के ऐसे बहुमुखी कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, दमदार आवाज और अनोखी शैली ने उन्हें अपने दौर का विशिष्ट अभिनेता बनाया। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। अपने आधुनिक अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और फैशन के प्रति खास पसंद के कारण वे लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपने काम और व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जो हमें हमारे द्वारा बजाई गई धुनों को जो हम साथ साथ बजाकर आपको सुनवाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी भेजी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि बहुत ही प्यारे लगे फिरोज खान। साथ ही वो कह रही है कि प्यार कोई सोच समझकर किया हुआ फैसला नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। कभी किसी की एक मुस्कान से, कभी उसकी बातों से, उसकी प्यारी सी आवाज से, उसके भोलेपन से, उसकी सादगी से, और कभी किसी बिना किसी वजह के भी कोई दिल के करीब आ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी से अपना बन गए। आज तो लोगों की एक ही पसंद दिख रही है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। फिल्म धर्म

आत्मा का ये गीत, जी हाँ, और ये हमने सुनवा दिया है, हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी ये गीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज यादों की महफिल प्रोग्राम बढ़िया गीतों से सजा था, सुरीला सफर में ऐसे गाने सुनने की चर्चा तथा सवाल जवाब की अपेक्षा करते हैं। आप सुनिए आगे ये गीत जो आज हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आनंद लीजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते दिल बाग बाग हो गया, ऐसे खूबसूरत एहसास कभी जगाने के लिए मूड बनाना पड़ता था, आज शब्दों का ऐसा तिलिस्म देखने को मिला कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ापा पीछे छोड़ जवान हो गए। क्या बात है, अब ढूंढते हैं प्यार को, देखिए कहाँ मिलता है। आज तो गीतों की बहार होगी, उसी में दिल बहलाते हैं और एक अच्छी दोपहरी विविध भारती के संग बिताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार तो है ही विविध भारती के संग। और अब जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइएगा इस फिल्म का नाम।

सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये भी साथ बताते चलिए। क्या आकर्षण भी सच्चा प्रेम दर्शा सकता है?

0: इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, लेकिन इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये हमने आपको बताया। और अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: तो श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। और इस कार्यक्रम की ये खास बात है कि जो गीत हम चुनते हैं उससे ये कार्यक्रम बनता है सुरीला, लेकिन आपके संदेशों से बनता है सजीला। तो भेजते रहिए हमें आपके संदेश, हमें इंतजार है बेसब्री से आपके संदेशों का। अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना एक अतार्किक रोमांच है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सामान्य और तर्क संगत दुनिया में अलौकिक मानने के लिए प्रलोभित होते हैं। प्यार की भावना व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति को जीवन के सभी पहलुओं में एक सर्वोच्च आनंद की अनुभूति से भर देती है। उन्होंने एक बड़ा ही प्रयास से बहुत बड़ा संदेश हमें भेजा है, विस्तार में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, फिर भी आपका संदेश हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार तो कब क्यों कहाँ और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी को देखा और वो दिल में उतर गया और प्यार हो गया, पर प्यार जब चेहरे पे झलकता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसकी एक नज़र मिल जाए इतनी फरियाद, चाहत सचमुच निगाहों का ही खेल है। उनकी निगाह पड़ी तो दिल खुश, न पड़ी तो अपनी निगाहें उदास। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल सजी हुई है, यानी कि वो सुन रहे थे तब उन्होंने ये संदेश हमें भेजा। मेरा बहुत ही पसंदीदा गायक SP बालसुब्रमण्यम, उनकी जयंती, उन्हें याद किया जा रहा है और सुपरहिट गीतों से सजा हुआ इन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि जिंदगी की राह में जब कोई हम सफर मिल जाता है तो खामोश धड़कनों को भी एक नया साज मिल जाता है। तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है बाहर, जब तुम देखते हो तो थम जाता है संसार। मोहब्बत तो वो पावन दुआ है जो भगवान से मिलवाती है, सच्ची चाहत ही दिलों के सारे फासले मिटाती है। भुला कर शिकवे गिले थाम लो हाथ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, वो गीत कार्यक्रम का पहला गीत नहीं था, वो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत चेहरे और बातों से नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई से भी पहचाना जाता है। मन में जरा सा भी संदेह अगर उठ जाता है तो प्यार प्यार नहीं मिल पाता और खो जाता है मिलने की बजाय।

जी श्रोताओं, बताते चलिए कि जब किसी से प्यार हो जाता है और वो हमारा साथी बन जाता है, तो आप उसकी तारीफ में क्या कहना पसंद करते हैं? कब आपने आखिरी बार तारीफ की थी उसकी और कैसे, ये बताइए।

जी हाँ, एक और गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धर्मात्मा से। आवाजें फिर से मुकेश और कंचन की थी। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम अपने आप में निर्मलता, शुद्धता, करुणा और असीम आनंद को समेटे हुए है, और यह वह चुंबकीय खिंचाव है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के कण कण को एक सूत्र में बांध कर रखता है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक दौर में भले ही प्यार के मायने और उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप आज भी वही है। प्यार का मतलब केवल किसी के ख्यालों में खोए रहना या पजेसिव होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायक बनना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। प्यार जीवन का वह खूबसूरत उपहार है जिसे जितना

आपने कब की थी तारीफ, उनकी जिन्हें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक श्रोता कहती हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जिंदगी में एक अलग ही नूर है, शायद इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती है। जब तुम अपनी उन मासूम नज़रों से देखते हो तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसा पावन बंधन है जो दो सच्चे दिलों की धड़कन बन जाता है। जी हाँ, तुम्हारी इसी शरारत, ज़रा सी शरारत और वफा ने दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा लगता है मानो सदियों का कोई अधूरा ख्वाब आज तुम्हारे साथ मुकम्मल हो गया हो। बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास दे जाता है। हमारे श्रोताओं ने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं, उनमें से कई गीत ऐसे हैं जो अभी तक जो बच चुके हैं वो भी शामिल हैं। आप आगे सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। और एक श्रोता कह रही है कि प्रेम का एहसास बड़ा सरल है मगर तकदीर के नियम बड़े जटिल हैं। यह बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। कभी कभी लगता है प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी कभी कभी बड़ी अराजक हो जाती हैं। वे किसी नियम को नहीं मानती और प्रेम टूट जाता है। इंसान इसी त्रिकोण में अपने अर्थ खोजता रहता है और प्रेम की यही खोज उसे इंसान बनाती है, एक सच्चा इंसान। बहुत खूब। अब आ रहा है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात। भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफ़र मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूँ और कहता हूँ जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियां और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है, बिल्कुल। एक श्रोता कह रही है, प्यार में पसंद ना पसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी है। जी हाँ, हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। प्यार जीवन में ज़रूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूँ, तेरी सूरत पर नहीं मैं तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो एक उभरती गायिका रही हैं, जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वीर जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए, चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश अभिनेता माना जाता था। उनके लेदर बूट्स, हैट्स, सिगार और वेस्टर्न लुक ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड सेट किया था, बिल्कुल। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें लिख भेजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी शादी के पहले मैंने पत्नी से एक साल प्यार किया, एक साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी, प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई, हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूँ, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूँ। क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीतबद्ध किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूँ। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की करते हैं, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी, कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। भाई बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए,

एक श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हो, हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है। हमारी एक श्रोता हमसे साझा कर रही है कि क्या खूब लगती हो ये गीत हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बच चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फिरोज खान साहब की बहुत शानदार फिल्म रही है और इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन अफगानिस्तान में किया गया था। पूरी एक टीम एक महीने से ज्यादा वहां पे रही थी। जी धन्यवाद ये बात साझा करने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह क्या गलत फहमी है, दूसरा पहला और पहला दूसरा गीत क्या कहना चाहते हैं आप? एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख्य संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं, अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया था, मजू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नज़र सबके पास नहीं होती, और ज़िंदगी में वो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना जिंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती से, वो भी कई सालों से। जी, विविध भारती से तो आपका प्यार चलते ही रहना चाहिए।

श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है। और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने

विनम्रता के हथियार से, समस्त संसार की झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला सफर सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान के फिल्मों की ही बात हुई है स्मृति दिवस पर। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हीं के गीत आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहाँ हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकें। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाज़त लेती हूँ मैं, पूजा नारानिया, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए अंग्रेजी और हिंदी में दोपहर समाचार।

0: का संकल्प अभियान. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है. उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की. सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई. ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना. और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है. श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है. गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है. प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया.
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है. ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद. आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है.
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट.
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे. उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए. प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा

0: प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
5: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
7: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
6: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
8: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
6: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

0: समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, अभी आप पुनः सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल हैं। संगीत बत इस गीत को किया है रवि ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदा बहार नगमे। जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ऊंचे लोग इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल चित्रगुप्त की बनाई धुन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

0: नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में मजू सुल्तानपुरी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत। फिल्म का नाम है वापस।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सबकी जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है, बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। तो आइए आज की इस खूबसूरत मुलाकात में कुछ बातें दिल से करें जो दिल तक पहुँचे, कुछ अनुभव साझा करें और शायद उन बातों में से किसी की एक छोटी सी बात किसी दूसरे के दिन को बेहतर बना दे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ, आपकी आवाज और आपकी बातें इस कार्यक्रम को बनाती हैं खास। तो देखते हैं जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मध्य प्रदेश से, अंजुम परवीन मंदसौर जिले से।
0: अच्छा, तो अंजुम जी बताइए कुछ अपने बारे में, बताएंगे आप पहले?
1: बस हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। फिर नर्स का कोर्स कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है परिवार में?
1: जी मम्मी है, बहन है।
0: ये बताइए कि आप मम्मी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं कि नहीं, या फिर मम्मी गुस्सा करती हैं?
1: नहीं, मम्मी आटा गूंथती है तो रोटी बना देती हूँ, सब्जी मम्मी बनाती है, बर्तन वर्तन कर देती हूँ, कपड़े ये चीज
0: तो होनी चाहिए।
1: सर्विस करती है तो फिर घर का काम करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी चाहिए वैसे भी, है ना? मम्मी अगर घर का काम कर रही, कोई भी कर रहा हो, चाहे बहने भी कर रही हूँ या कोई भी कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत हम अगर हाथ बटा देते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है और लगता है मम्मी को, हाँ मेरी बेटी देखो मेरे काम में हाथ बटाती है। अच्छा बताइए, तो आप आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जी फिल्म है उस्ताद ही उस्ताद से, और गाना है साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कट जाएंगे।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ जी मैडम।
0: आज
1: हाँ
0: कौन
1: बोल।
0: हाँ जी कौन सी सहेली से मेरी बात हो रही है पहले ये तो बताइए।
1: हाँ मैं मकवाना रमीला बेन बोल रही हूँ, इंदरपुरा
0: अच्छा
1: गांव से।
0: तो बताइए रमीला बेन जी कि आप क्या करती हैं।
1: अभी तो मैं घर पे हूँ, मगर अगली बार फोन लगा, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो मैं बोली गीत सुना।
0: अच्छा, तो आपके बेटे का बर्थडे आज। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेज हैं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आपके बेटे के लिए। तो रमीला बेन जी जी बताइए। हाँ
1: बेटी का नाम है आरती
0: हाँ अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो बेटी हैं और बेटे हैं, आपके काम में, आपके घर के काम में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं कि नहीं।
1: अभी लड़की तो मेरी 30 साल की हुई, मगर मन बुद्धि चलती नहीं ऐसी है।
0: अच्छा,
1: और लड़का है ना, वो तो अभी शादी हो गई, लड़की है, सिटी में रहता है, बड़ोड़ा में
0: अच्छा अच्छा
1: जॉब करती है लड़की की मम्मी,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: वो लड़का दोनों।
0: ये
1: हाँ
0: बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का और कौन सा गाना सुनना है।
1: मुझे दिल का क्या कसूर का, विजय
0: अच्छा
1: भारती का।
0: अच्छा आपकी पसंदीदा हीरोइन का, तो चलिए आपकी
1: हाँ
0: पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ, राधिका कुर्मी।
0: तो राधिका जी ये बताइए कि आप करती क्या हैं?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं, कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: नाइन्थ में, यानी कि आप अभी
1: जी
0: अभी 10th तक पहुंची नहीं है, तो 10th
1: जी जी
0: की तैयारी में है ना, तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी दीदी, मैं दीदी हम दिव्यांग है, तो दीदी हम लोग संगीत सीखते हैं, तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस। दीदी हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु,
0: अच्छा,
1: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी, कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
0: अच्छा, तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
1: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है तो हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी
0: हाँ ये तो
1: वही
0: है।
1: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
0: अच्छा
1: दीदी सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी
0: तो
1: दीदी,
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज
0: और
1: और
0: गाना
1: गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, हम कभी ना बनो, हम कर्नाटक चिकमंगलूर से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सबसे भी सखी सहेली, हेलो सहेली, छाया गीत, वो सब सुनती हमें।
0: अच्छा, आपको किसी चीज से डर लगता है क्या? कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं डर लगता।
0: नहीं?
1: क्यों?
0: क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं, नहीं नहीं डरती मैं।
0: नहीं?
1: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती,
0: अरे
1: किसी
0: वाह,
1: चीज से भी नहीं डरती, सिवाय अल्लाह के।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: नहीं
0: है ना।
1: नहीं नहीं डरती, वो
0: क्योंकि
1: डरते ही वो बहुत जने डरते हैं,
0: हाँ, क्योंकि
1: डरते
0: कभी
1: वो,
0: सफाई करते हैं
1: मुझसे
0: ना घर
1: भी नहीं
0: में
1: डरती मैं।
0: जी, है ना।
1: हाँ,
0: तो बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
1: आप तो ऐसे न थे। हाँ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल
0: अरे
1: है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: शुक्रिया हमारी
0: बहुत
1: फरमाइश के
0: बहुत
1: लिए।
0: धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मेरा नाम शिवाती, गांव गोसगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: तो ये बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है? परिवार में?
1: जी परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा।
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप?
1: हाँ जी, अभी तो स्कूल गया।
0: अच्छा, छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि बड़ा
1: नहीं
0: है?
1: छोटा, अभी तो छोटा ही है।
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना
1: हाँ जी।
0: भतीजे के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा, एकदम चिल्ला पड़ती हो जिसको देख के?
1: छिपकली।
0: छिपकली।
1: हाँ जी,
0: सही बात है ना?
1: हाँ जी, पर भतीजा नहीं डरता है, छोटा सा है पर वो नहीं डरता,
0: हाँ, वो नहीं डरता। अच्छा, तो ये तो
1: वो
0: अच्छी
1: नहीं
0: बात है
1: डरता।
0: फिर तो। आप जब भी आपको डर लगे ना, तो छिपकली या कॉकरोच निकल आए, तो आप उसको बुला लीजिए, अपने भतीजे को कहिए कि पहले तुम इसको हटाओ फिर हम खेलेंगे।
1: जी वो तो अपने आप आ जाता है, झाड़ू लेके फिर खुद से मारते हैं कि अब बुआ जी आप कर लो। जी
0: अच्छा, तो बुआ जी ये बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी बेटा, फिल्म का गाना सुना है, खुशियों का दिन आया है।
0: चलिए सुनाते हैं आपको आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: तारीफ कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ मैडम, पालदाना का इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं सिलाई करती मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, हसीना जी आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो।
1: नहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर
0: नहीं लगता
1: निडर
0: छिपकली
1: रहेंगे तो,
0: से।
1: अगर अपने सामने कभी खतरा भी आएगा निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। छिपकली
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से,
1: से तो बहुत डर लगता है मैडम, हर किसी को
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है,
0: मैं
1: और
0: पूछना
1: महिलाओं को तो अधिक डर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर।
1: सफाई करते ना मैडम, अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो तो, ऐसे दिखाई नहीं देती, मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए
0: हाँ
1: तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाए और इसके पीछे छिपकली हो, है ना, लगता है
1: जी
0: ना।
1: जी तो इसके ये ऐसा करने तो मैडम, झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को आप भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है, कभी उधर छुप जाती
1: हाँ
0: है ना।
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती है वो।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है ना।
1: जी,
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का।
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम और गाने के बोल हैं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमका सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे
0: अरे
1: दो। ये
0: आपसे
1: सुना दे
0: आपसे कोई भूल नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामनी हरवार।
0: अच्छा, तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैम कुछ नहीं कर रही, पढ़ाई करती हैं मैम।
0: पढ़ाई करती हैं
1: मैम जी कक्षा 7वीं में।
0: अच्छा, 7th में आप, यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी आप 10th तक पहुंचने में काफी टाइम है आपको, तो अभी बहुत ज्यादा
1: जी
0: चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको
1: जी
0: कौन से विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ने में?
1: मैम जी हमें, मैम जी कुछ नहीं, खाना बनाए बहुत मजा आता है।
0: खाना बनाना अच्छा लगता है। तो अब
1: जी
0: ये
1: मैम।
0: बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती?
1: मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है,
0: कौन सी फिल्म का है?
1: सर्वप्रथम मूवी का।
0: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
1: जी मैम।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जालना महाराष्ट्र से।
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सब?
1: हमारी सासू माँ है, सस्ते है, मेरी दो बेटियाँ हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: प्रियंका अंकिता।
0: अच्छा तो बेटियां बड़ी हैं कि छोटी?
1: हमारे घर वाले राजेश तिवारी,
0: अच्छा
1: अभी एक कॉलेज जाते है, एक स्कूल जाते है।
0: अच्छा है ना।
1: नन्हे चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: ओ हेलो, फरमाई सुनते हम
0: अच्छा, और कौन
1: आज
0: कौन
1: के
0: से
1: फनकार।
0: कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: सखी सहेली, हेलो
0: या
1: सहेली,
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते
1: हाँ बातचीत वाले जा रहा।
0: हैं? अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह
1: हाँ
0: या इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे?
1: हो, कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं?
1: इडली बना दे, हम जा रहे
0: इडली।
1: इडली डोसा।
0: अरे वाह, इडली डोसा। मतलब ये रहता है ना कि ये एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है
1: ओ
0: खाने
1: सही
0: में।
1: बात है।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आरती
0: हाँ
1: सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: प्रतापगढ़ गांव है मेरा, बासी जगेश्वरगंज,
0: तो
1: और मेरा नाम रीना देवी मौर्य है।
0: अच्छा, तो रीना देवी जी, ये बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम जी, मैं यही सिलाई उलाई से अपन करती हूँ घर पर।
0: अच्छा, तो आप घर से ही काम करती हैं सिलाई का, है ना?
1: हाँ,
0: तो
1: वही से
0: आप क्या
1: अपन
0: क्या सिल लेती हैं, क्या क्या सिलती हैं?
1: ब्लाउज पेटीकोट यही सब सिलती हूँ।
0: अच्छा, तो आप महिलाओं के कपड़े सिल लेती हैं अच्छे तरीके से। तो ये बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हम हैं, दो बेटे हैं।
0: अच्छा, तो बेटे छोटे हैं कि बड़े?
1: नहीं मैम जी, एक आरा में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में।
0: अच्छा, यानी छोटे ही हैं। पढ़ाई तो अब इस समय काफ़ी अच्छे से करनी पड़ रही होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी होंगे, है ना? तो ये
1: हाँ
0: बताइए, आपके दोनों बेटे हैं तो क्या बेटे काम में कुछ हाथ बटाते हैं घर के?
1: हाँ मैम जी, एक रहता है दुकान पर रहता है, तो हम अपना काम घर का कर लेते हैं, और उसके बाद स्कूल चला जाता है, तो स्कूल से आता है, अभी
0: अच्छा
1: 2 बजे आएगा गए।
0: अच्छा तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब काम में भी हाथ बटाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिंसियर हैं बच्चे। तो ये बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप थोड़ा बहुत खाली समय में होती हैं, तो आप क्या करती हैं?
1: बस मैम जी, अपन ये सिलाई का काम करते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
0: गाना सुनती हैं। तो ये बताइए,
1: हाँ
0: आपको
1: मैम
0: कौन कौन से, आप जो ये विविध भारती सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से इसके कार्यक्रम
1: जी,
0: हैं अच्छे
1: हम तो
0: लगते हैं?
1: जब समय पा जाते हैं तब अपन मोबाइल पे चला देते हैं, वही सुनते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं।
0: हाँ, यानी कि आपका जो काम है वो आसान हो जाता है ना करना।
1: हाँ अपन काम करते रहते हैं, खाना बनाते हैं तब भी चला लेते हैं, सुनते रहते हैं, और अपना सुनते रहते हैं।
0: यही तो खूबी है ना संगीत की और विद भारती की, कि मतलब आपका जो काम है उसको आसान बना देता है ना। आप सुनते रहिए उसको और अपना काम करते रहिए, तो पता
1: किसी
0: नहीं
1: से
0: चलता है
1: कोई
0: कि हम
1: नहीं,
0: कितनी देर से काम
1: अपना
0: कर रहे हैं।
1: हाँ अपना गाना सुनते रहो, अपना काम करते रहो। ठीक
0: तो ये बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं अपने मन का?
1: मैम जी, राजा हिंदुस्तानी का आए हो मेरी जिंदगी में।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है, तो सुनाती हैं आपको आपकी पसंद का ये।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैडम
0: तो बताइए पहले आप कौन से शहर से बोल रही हैं और आपका खुद का नाम क्या है?
1: जी मैडम, मेरा नाम सीमा सोलंकी है और
0: और
1: मैं उज्जैन जिले के गांव ताजपुर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, आप उज्जैन से बोल रही हैं। उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है जिसे, है ना?
1: उज्जैन का गांव है, ताजपुर कैसा है गांव।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैडम, मैं तो खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
0: अरे वाह, खेती बाड़ी का काम करती हैं, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है, समझिए, है ना?
1: हाँ, बहुत मेहनत का काम होता
0: तो मतलब आप सुबह से निकल जाती होंगे, है ना? सुबह जाना होता
1: है।
0: होगा
1: हाँ,
0: आपको।
1: सुबह से खाना वाना बना के, मतलब है घर से खाना वाना बनाने वाला, और भी दो बेटियां हैं।
0: तो बेटियां बनाती हैं, काम करती हैं घर का?
1: हाँ, बेटियां भी मदद करती हैं, और खेत पे आके फिर मजदूर को खाना वाना, उनका चारा निराव पानी करके फिर
0: हाँ,
1: खेत का काम करते हैं।
0: फिर आपको एक चीज होती ना कि वहाँ खेत पे जाकर खाना खाना, सच में ऐसा लगता है ना
1: हाँ, खेत
0: सोच
1: पे
0: के।
1: खाना भी खेत पे ही खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना जब
0: हाँ
1: भूख लगती है तो फिर दोपहर को वही खा लेते हैं।
0: हाँ तो वहाँ पे आप खेत में अपना खाना लेकर जाती होंगे ना?
1: हाँ, खेत पे कुआ है तो उसमें से पानी आने भर के वही खाना खा लेते
0: वाह,
1: हैं।
0: कितना प्रकृति के पास रह रही हैं आप, सोचिए, ये
1: हाँ
0: भाग्य की बात है एकदम, जो प्रकृति के इतना करीब रहने को मिल रहा है आपको। वैसे भी ना खेत पे जाकर, वहाँ पे खुले में एकदम खुला खेत है, वहाँ पे सब फसलें लगी हुई हैं वहाँ, है ना,
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: आप
1: लगता है
0: बैठ
1: मैडम
0: के
1: खेत
0: खाना
1: पे
0: खा रहे
1: तो।
0: हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना
1: हाँ, ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी हैं और
0: साथ में
1: फसलें
0: आपका
1: भी।
0: रेडियो सेट भी रखा हुआ है, आपके फोन भी आप सुन रहे
1: हाँ, मैं
0: हैं
1: अपने
0: विविध
1: फोन
0: भारती।
1: पे रेडियो भी सुनती हूँ।
0: हाँ, तो
1: हाँ,
0: ये
1: लगेगी
0: बताइए कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं या?
1: जी।

0: मैडम पढ़ती है अभी, दोनों कॉलेज कर रही है।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत
0: तीन
1: अच्छी बात
0: बेटियां
1: है।
0: हैं मेरी, तो तीनों बेटियां अभी एक तो स्कूल कर रही है और दो कॉलेज कर रही है।
1: यानी कि घर के काम में हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपनी
0: जी,
1: पढ़ाई भी करती हैं।
0: 8 दिन में एक बार कॉलेज जाती है वो।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई भी करना और साथ में
0: पढ़ाई
1: अपने आप को,
0: भी कर रही है और मदद भी करती है। दो
1: नहीं सच में बहुत अच्छी बात है ये।
0: बेटा है उसके
1: तो बेटा कुछ करता
0: पापा।
1: है मदद?
0: हाँ, बेटा तो बेटा भी करता है सुबह शाम, वो भी कॉलेज कर रहा है
1: नहीं,
0: और
1: सही बात है,
0: दुकान भी
1: बच्चों को
0: चलाता है।
1: सिखाना भी चाहिए ये सब चीजें कि आप पढ़ाई भी करो साथ में, थोड़ा सा हाथ भी बटाओ,
0: हाँ,
1: तो
0: साथ में
1: उससे
0: थोड़ा बहुत
1: जुड़ाव
0: मदद
1: रहता है।
0: भी करते हैं।
1: बहुत अच्छा रहता है ये।
0: हाँ, और उसके पापा तो है नहीं, उसके पापा उसका एक्सीडेंट हो गया,
1: हाँ,
0: तो बच्चे ही मदद करते हैं।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है, सब मदद करते हैं बच्चे आपस में। तो ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी मैडम, वो चल अकेला मेरा मेला पीछा छूटा साथी, चल अकेला सुनना।
1: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: चल।

0: अकेला।
1: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 28607288 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867028888 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों का कॉल आज नहीं लग पाया वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाइए और अपनी सखियों को अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
2: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदा।
2: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर आकर्षक निवेश वातावरण बना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। और एशियाई खेल खबरों के साथ है सौरभ अग्रवाल।
2: एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। दक्षिण कोरिया को रजत और ईरान को कांस्य पदक मिला। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। कबड्डी में भारत की पुरुष टीम ने थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने जॉर्डन के मोहम्मद अदनान अबू को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने मालदीव के अहमद निबाल और अब्दुल रजाक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने पहले दौर में कोरिया की सोंग यू मी को पराजित किया। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर निशानेबाजों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहाँ निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहां नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था,
2: जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए।
0: दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहां आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे, उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है और, श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं, पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना?

0: फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति।
1: ठीक है,
0: श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी।
1: माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी।
0: सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी, उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां, हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा, तुम कहना क्या चाह रही हो?

और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो? रेखा हंसने लगी। जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो। अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा? इंसानी जिजी विशा। वही तो मैं कह रही हूं, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों? रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बताए देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूं, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।

0: और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं होगा माँ। दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा, हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूं। यहां 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि यह सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
1: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भरकर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।
5: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे श्रोताओं। ये आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। समय हो गया है आज की पहली सभा के कार्यक्रमों को यहीं पर समाप्त करने का। अब से 1 घंटे बाद हम दूसरी सभा के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। इसी के साथ आरंभ करते हैं आज की हमारी दूसरी सभा।

दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की हमारी दूसरी सभा में। चलिए आपको जानकारी दे रहे हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों की। रोजाना की तरह मार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भक्ति गीत चाउनी रालसुन और उनके साथियों की आवाजों में। किदले लूले कोमे और उनके साथी पेश करेंगे जेमी आधुनिक गीत। समय रहेगा 6:25 का। 6:45 पर संध्या रांचलिक पाटोरी रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

दिमासा कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 7 बजे आधुनिक गीत लिविंग डेस्टिनी बैंड की ओर से। 7:20 पर आपको सुनवाए जाएंगे कार्मिक कार्यक्रम भक्ति गीत, पेश करेंगे काजी रिंगहिबी और उनके साथ ही 7:40 का समय रहेगा कुकी कार्यक्रम का। पारंपरिक गीत आपको सुनवाए जाएंगे नेमहा चोंगलोई और उनके साथियों की आवाजों में।

स्वच्छता ही सहभागिता। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुत करेंगे सिद्धार्थ पांडे। 8:23 पर एक ही फिल्म से गाने, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे बांग्ला गीतों का कार्यक्रम रविंद्र संगीत। पेश करेंगे सियोलीनाथ इमानुएल ट्यूडर और उनके साथी। 9:30 से लेकर सभा के अंत तक आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। दोस्तों, ये थी जानकारी आज के दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों की।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं हमारे स्थानीय वासियों के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं मार कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति गीत। कलाकार हैं जावनी रालसुन और उनके साथी

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार भक्ति गीत जावनी राल सुन और उनके साथियों की आवाजों में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अपना केंद्र है। अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाई जा रहे हैं, जैमी कार्यक्रम। जैमी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आधुनिक गीत किडले लूले कुओं में और उनके साथियों की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे जेमी कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक गीत के ले लूले कौमे और उनके साथियों की आवाज़ों में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है। अब आपको सुनवाए जा रहे हैं संध्या रांचलिक पाटोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आंचलिक बातोरी, रिले किए गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। जारी है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम, आइए सुनते हैं डिमासा कार्यक्रम के अंतर्गत डिमासा आधुनिक गीत लिविंग डेस्टिनी बैंड की ओर से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लिविंग डेस्टिनी बैंड की ओर से दिमासा आधुनिक गीत। इसी के साथ ही दिमासा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफ्तांग केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्बी कार्यक्रम। आइए सुनते हैं काजी रिंग हिप्पी और उनके साथियों की आवाजों में कार्बी भक्ति गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्बी कार्यक्रम के अंतर्गत काजी रिंग हिप्पी और उनके साथियों की आवाज़ों में कार्बी भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का फ्लंग केंद्र है। अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतिम पेशकश आइए सुनते हैं कुकी कार्यक्रम। पारंपरिक गीत पेश कर रहे हैं नेमहा चौंगलई और उनके साथी।
1: Pokoknya sulit, pemulihan panitia.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुकी कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक गीत कलाकार थी नेमहात चौंगलई और उनके साथी। इसी के साथ ही कुकी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अपना केंद्र है। अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम, स्वच्छता में सहभागिता सफाई मित्रों के साथ। इस कार्यक्रम को तैयार किया है सिद्धार्थ पांडे ने।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफलॉन्ग और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सिद्धार्थ पांडे। दोस्तों, देश में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान चल रहा है। इस साल की हमारी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष के अभियान के कुछ मुख्य विवरण इस प्रकार हैं। इसका आयोजन 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है जन भागीदारी, नागरिक स्वामित्व और स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देना। ये संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के मॉडल पर काम करता है। इसके 5 मुख्य स्तंभ भी हैं, जैसे स्वच्छता लक्षित इकाइयों का रूपांतरण, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता अभियानों में युवाओं और छात्रों को शामिल करना, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्ध। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम सुंदर और साफ रास्तों पर चलते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इन रास्तों को हमारे जागने से पहले चमकाने वाले हाथ किसके हैं? जी हाँ, वो हैं हमारे असली हीरो, हमारे सफाई मित्र। आज हमारे स्टूडियो में हाफलॉन्ग म्यूनिसिपल बोर्ड से 2 ऐसे ही खास मेहमान मौजूद हैं जो हर रोज सुबह उठकर हमारे शहर को सांस लेने लायक बनाते हैं, स्वच्छ रखते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के पहले मेहमान बाबूलाल चावरिया जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: और आज की दूसरी हमारी मेहमान है हाफलॉन्ग म्यूनिसिपल बोर्ड की हमारी सफाई मित्र मुन्नी चावरिया जी, आपका भी स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
0: आपकी इजाजत हो तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए।
1: बिल्कुल, शुरू कीजिए
0: जी।
1: इससे पहले मैं आपको सह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि दूसरी बार मुझे मौका दिया है इंटरव्यू करने का।
0: जी,
1: उसके लिए सह दिल से आपको धन्यवाद।
0: जी, पिछले साल जब हमने आपसे बातचीत की थी, आप आए थे, अन्य एक मित्र भी आपके साथ थे, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा
0: जी।
1: और हमको कॉमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे मिले मुझे।
0: बहुत अच्छा लगा जब आपकी ओर से प्रशंसा के कुछ शब्द हमको सुनने मिलते हैं। तो शुरुआती सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए, आप हाफलॉन्ग म्यूनिसिपल बोर्ड के साथ कितने

0: समय से जुड़े हैं और आपकी काम की शुरुआत रोज सुबह कैसे होती है?
1: मैं कम से कम 25 ईयर्स हो गया म्यूनसिपैलिटी बोर्ड में काम करती हुई। सुपरवाइजर का पोस्ट में हूँ मैं
0: जी।
1: और काम की शुरुआत होती है हमारी सुबह 4 बजे
0: जी।
1: 4 बजे शुरू होती है तो कम से कम 9-10 बजे तक चलती है। उसके बाद फिर दिन में 1 बजे होती है
0: जी।
1: ड्यूटी, 1 बजे होने के बाद में 4 बजे तक चलती है वो, उसके
0: जी
1: बाद ख़त्म।
0: जी उस दिन का काम खत्म। अब हमारी आज की दूसरी मेहमान मुन्नी चावरिया जी से मैं पूछना चाहूँगा कि कितने साल से आप इस काम में हैं और कैसा लगता है ये काम करना?
2: सर 20 साल हो गया काम,
0: जी
2: सफाई कर्मचारी हम लोग, सफाई करते करते
0: जी
2: सुबह उठता 4 बजे, 4 बजे से 8 भी बज जाता, 8:30 भी हो जाता, 10 भी बज जाता सार हम लोग को सफाई करते करते। फिर
0: जी
2: सुबह 1 बजे ड्यूटी जाता है, 1 बजे से 3 भी बज जाता, 4 भी बज जाता हम लोग को।
0: जी 20 से ज़्यादा सालों का आप दोनों का एक्सपीरियंस है काम करने का, और इस काम को इतने वर्षों से आप कर रहे हैं, कैसा लगता है मन में?
2: बहुत अच्छा लगता है और
0: जी
2: अच्छा करने मांगता हम लोग सार।
0: जी अब बाबूलाल जी, हम कुछ आगे बढ़ते हुए ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सुबह सुबह जब पूरा शहर सो रहा होता है तब आप सड़कों पर होते हैं, कोई भी मौसम हो, आप करते हुए आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
1: चुनौतियां तो बहुत है,
0: जी
1: जैसे कि बरसात है, धूप है,
0: जी
1: मगर फिर भी क्या करें, जो ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हर आज तक हम लोग ईमानदारी से काम किया है
0: जी
1: और ईमानदारी से करते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो टाउन है
0: जी
1: उसको साफ सुथरा रखना है। और साफ सुथरा रखने में एक हमें बहुत अजीब बात लगती है कि
0: जी
1: यहाँ पर शिक्षित आदमी भी, सब शिक्षित आदमी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं,
0: कोई कोई
1: कोई कोई ऐसा भी है जो ये गंदगी उंदगी फैलाता है, मगर उसको क्या समझाएं हम,
0: जी
1: समझाने में हमें उल्टा और धमकी मिलता है।
0: ये कुछ कुछ लोग ऐसे
1: कुछ
0: हो
1: कुछ लोग
0: जाते
1: हैं, सबके बारे
0: जी।
1: में नहीं बता रहा हूँ मैं, शिक्षित आदमी भी ऐसे करते हैं,
0: जी
1: उनसे नहीं करना चाहिए ऐसे।
0: जी जी और मुन्नी जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस दिन मौसम ठीक रहता है तो बहुत अच्छी बात है, या कभी बारिश होती है तो उस समय काम में आपको कुछ दिक्कतें होती हैं, या उस दिन को आप कैसे हैंडल करते हैं?
2: हैंडल करने पड़ता सार,
0: जी
2: छाती लेके भी हैंडल करने पड़ता, ड्यूटी तो करनी पड़ेगा मेरे को, छाती लेके बारिश हो धूप हो ड्यूटी में तो आने पड़ेगा मेरे को।
0: जी और बाबूलाल जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड के अंडर हाफलोंग में हमारे सफाई मित्र कितने होंगे पूरे हाफलोंग शहर को साफ रखने के लिए?
1: 40 आदमी है, चालीस
0: जी
1: आदमी है मेल फीमेल मिला
0: मिला
1: के,
0: करके
1: तो
0: जी जी
1: उसी में पूरा काम करना पड़ता हमें। दूसरी बात, मैं एक हाफलोंग वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी मोहल्ला हो
0: जी
1: उसमें कॉलोनी का आदमी जितने भी हो,
0: जी
1: वो कॉलोनी को कोई भी 1 महीना में 1 बार या 15 बार अपना से भी साफ सफाई करके हमें इन्फॉर्मेशन कीजिए, म्यूनसिपैलिटी
0: जी
1: बोर्ड को कीजिए, हम लोग गाड़ी दे देंगे उसको गाड़ी, वो अपना साफ सफाई रखने से क्या होता है कि टाउन भी सफा रहेगा, म्यूनसिपैलिटी बोर्ड के ऊपर भी इतना वो नहीं आएगा। तो
0: जी
1: इसके बारे में मैं आप लोग वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ।
0: जी जी और जैसा कि इस साल का नारा जो है वो है स्वच्छता में सहभाग, आपके हिसाब से जब तक आम जनता आपके साथ मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तब तक शहर को पूरी तरह से साफ रखने में कितना मुश्किल है?
1: बहुत इम्पॉसिबल है सर,
0: जी
1: क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड कभी भी आप लोग टाउन को साफ सुथरा नहीं रख सकती अकेली,
0: जी
1: क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट हमें चाहिए, पब्लिक अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो हम इम्पॉसिबल है काम करने को।
0: जी
1: दूसरी बात है, हम लोग का जो टाउन कमेटी का गार्बेज प्लेस है वहाँ पे नहीं फेंके भी और दूसरी जगह भी आदमी फेंकता है गार्बेज। तीसरी बात है, केले का पेड़ हो दूसरा और कोई पेड़ हो उसको काट के रास्ता में फेंक देते हैं,
0: जी
1: वो भी हमें उठाना पड़ता है, तो वो कम से कम अपना एरिया में रखे, बाउंड्री में रखिए,
0: जी
1: वो पहुंच जाएगा, पहुंच के उसका सार भी हो सकता हो, तो अपना घर में भी यूज़ कर सकता हो, कुछ भी मरचा उर्चा जो भी सब्जी उब्जी लगा सकता है
0: जी
1: तो ये भी कर सकता है, मगर ऐसा नहीं करता है।
0: जी मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप जैसा मेरे घर में या किसी के घर में भी कुछ कूड़ा कचरा है तो उसको प्रॉपर जो प्लेस म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से दिया गया है वहां तक जाके रखना है?
1: हाँ फेंकना है,
0: जी वहीं, ऐसा नहीं कि गेट के बाहर रास्ते हैं
1: हाँ
0: किसी
1: वहाँ जहाँ
0: किसी
1: तक
0: और
1: फेंक
0: के
1: दे,
0: बाउंड्री में जा करके रख दिया,
1: हाँ जहाँ तक
0: किसी ने
1: फेंकना
0: देखा
1: है,
0: नहीं चलो इधर ही रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है?
1: ऐसा नहीं करना है, जहाँ तक
0: जी
1: नहीं फेंकना है, गार्बेज प्लेस है वहीं फेंकना है।
0: जी। और एक सवाल, जैसा कचरा अलग करने पर ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जैसे प्लास्टिक होते हैं, जैसा किचन के यूज़ किए हुए जो सब्जियाँ होती हैं या कुछ बासी खाना होता है, ये सब क्या इन सब चीज़ों को ऐसा भी होता है क्या लोग एक ही थैले में बांध करके दे देते हैं जिससे
1: बिल्कुल
0: आप लोगों को तकलीफ होता है?

0: बिल्कुल तकलीफ होती है, एक ही में देते हैं, वो अलग अलग नहीं करते हैं।
1: उसके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सूखा अलग होना चाहिए और गीला अलग होना चाहिए, तो उसमें क्या सुविधा होती है,
1: जी
0: कचरा को उसको डिवाइड करने में भी हमें सुविधा होगी
1: जी
0: और उसको क्या स्टार रूल बनाने के लिए भी सुविधा होगी, यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं।
1: जी। अब काम के दौरान जब लोग आपको देखते हैं तो उनका बर्ताव कैसा होता है? क्या स्वच्छ भारत मिशन के बाद लोगों की सोच में आप जिस काम को कर रहे हैं उसको सम्मान देने के तरीके में कोई बदलाव आया है?
0: आप लोगों
1: मतलब
0: में बिल्कुल सम्मान
1: सम्मान
0: मिलता
1: मिलता
0: है,
1: है
0: मिलता मिलता है,
1: जैसा आप ये मतलब दूसरी
0: कोई सा
1: नज़रों से कोई नहीं
0: हाँ
1: देखता?
0: भेदभाव नहीं है सर,
1: जी, ये तो बहुत रेस्पेक्टफुल बात है और बहुत ही अच्छा लगा।
0: बिल्कुल।
1: जनता का व्यवहार बहुत ही अच्छा है इसको लेकर के। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके कामों को लेकर के मतलब कुछ सावधानियाँ आपको सेहत को लेकर के बरतनी होती है, जैसे ग्लव्स हो गए, जैसे गम्बूट हो गए, ये सब
0: हाँ देता
1: आपको
0: मिलता
1: मिलता है
0: मिलता,
1: प्रॉपरली?
0: हाँ मिलता है,
1: जी
0: मिलता है,
1: जी
0: रेनकोट
1: और
0: भी मिलता है, बूट भी मिलता है, ग्लव्स भी मिलता है।
1: जी और अपना हेल्थ चेकअप को लेकर के
0: ओ
1: आप
0: हेल्थ
1: कितना
0: चेकअप,
1: कंसर्न रहते हैं, आप करते हैं बीच बीच
0: हाँ
1: में?
0: बीच बीच में करते हैं वो,
1: जी, क्योंकि वो बहुत
0: हाँ
1: ज़रूरी हो
0: जरूरी
1: जाता
0: जरूरी
1: है।
0: है, ये तो जरूरी हो जाता है
1: जी,
0: कि हेल्थ ही नहीं है तो क्या कुछ भी नहीं है ना,
1: नहीं है जी,
0: हेल्थ है तो सब कुछ है।
1: सब कुछ है जी। जैसा मुन्नी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप सब सहेलियाँ मिल करके जब काम करते हैं तो कभी कुछ आप लोगों को कुछ दिक्कतें आई हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये यहीं रख दिया, अगर ये यहाँ ना रख के वहाँ रखते लोग तो हमें सुविधा होती, ऐसा कुछ कुछ दिक्कत आपको काम
0: दिक्कत
1: में?
0: तो होती है सर, लेकिन फिर भी उठाने पड़ता है मेरे को तो कचरा, अभी रात
1: जी
0: गया घर का सामना तो उठाना ही पड़ेगा, रास्ता में आ गया तो।
1: हाँ, तो उस चीज़ को लेकर के आप दूसरे जो हमारी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, घर की हैं, उनको क्या मैसेज क्या कहना चाहेंगी कि वो प्रॉपर अपनी सही जगह पर रखे?
0: सही जगह में फेंकने का जगह में फेंको ये कचरा, घर
1: जी,
0: का सामने में मत फेंको।
1: बाबूलाल जी जैसा रेडियो के माध्यम से बहुत हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आप हमारे शहर के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहता हूँ, हमारा म्यूनसिपैलिटी बोर्ड का जितना भी हमारे कर्मचारी है, सैनिटेशन स्टाफ का,
1: जी
0: उनका आप साथ दीजिए, आपके घर में अगर कोई भी कचरा हो, गार्बेज हो, तो
1: जी
0: हमारे SI है, उनको फ़ोन कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, हम लोग गाड़ी भेजेंगे, गाड़ी का आप फीस दीजिए,
1: जी
0: गाड़ी भेजेंगे, आपको क्लीन करके लेके जाएंगे और इधर उधर मत फेंकिए कम से कम। और सबसे मेरी यही अपील है कि अपनी अपनी कॉलोनी को खुद अपना अपना साफ रखिए, क्योंकि अपना घर के सामने तो खुद साफ रख सकता है ना,
1: जी
0: दूसरा को तो कोई जरूरी नहीं है, अपना घर का एरिया अपना तो खुद साफ रख सकता है, तो आपको देख के दूसरा भी सोचेगा कि नहीं यार वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोग सुंदर हो जाएगा, सफा हो जाएगा।
1: जी और ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपको साथ नहीं देते, बहुत सारे लोगों को हम भी देखते हैं कि वो बहुत कंसर्न रहते हैं, जागरूक हैं, वो घर के अपने कचरे को ला करके प्रॉपरली गाड़ी में भी देते
0: देख
1: हैं
0: बहुत आदमी देते
1: और
0: हैं भाई,
1: आपके आपको सहयोग भी करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे
0: मैं
1: जो आपके
0: उनको,
1: सहयोग करते हैं?
0: मैं उसको बहुत से दिल से उसका धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे
1: जी
0: आदमी को। और मैं आपको पहले भी बताया था
1: जी
0: कि मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ,
1: जी जी
0: कि शिक्षित आदमी भी ऐसे इधर उधर कचरा फेंक रहा है,
1: कोई कोई जी
0: हाँ
1: हाँ
0: कोई कोई,
1: हाँ
0: सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं।
1: जी आपके काम से हमारा शहर तो सुंदर बनता ही है, बीमारियाँ भी दूर रहती है। जब आप साफ की हुई सड़क को पीछे मुड़कर जब देखते हैं
0: तो
1: तो
0: कितनी सुंदर
1: आपको कैसा
0: लगती है,
1: लगता है?
0: बहुत सुंदर लगती है
1: जी
0: सफा करने के बाद में।
1: और सबसे ज़्यादा संतुष्टि बाबूलाल जी किस में लगता है कि जब आप अपने काम को पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत साफ हो गया, उसमें कितनी संतुष्टि आपको
0: बहुत
1: आती है?
0: संतुष्टि मिलती है, और
1: जी
0: मुझे संतुष्टि इस बात की मिलती है कि मेरा हापलोंग टाउन
1: जी
0: ये स्वस्थ रहे, सुंदर रहे,
1: जी
0: सबको अच्छी स्वच्छ हवा मिले,
1: जी
0: मैं इसी में खुश हूं।
1: जी अब हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं आपसे, कि नालियों के जाम होने की समस्या होती है, जैसे पशुएं होते हैं उनको खतरा होने की समस्या होती है, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के जब लोग सड़कों पर या नालियों में प्लास्टिक की थैलियां और बोतल फेंक देते हैं तो बारिश के दिनों में या आम दिनों में भी नालियां जाम हो जाती हैं, उसे साफ करने में आपको कितनी मशक्कत या कठिनाई करनी
0: बहुत
1: पड़ती है?
0: दिक्कत होती है सर,
1: जी
0: दिक्कत होती है क्योंकि तेल की बोतल हो, पानी की हो,
1: जी
0: प्लास्टिक की थैली हो, वो सब ड्रेन में फेंक देते हैं,
1: जी
0: वो नहीं फेंकना है, वो अपना कोई भी एक बस्ता होगा पुराना उसमें स्टॉक करके रखिए, जब
1: जी
0: हम लोग का गाड़ी आएगा या गार्बेज प्लेस है वहां पे आप फेंक दीजिए, म्यूनसिपालिटी बोर्ड का आदमी आएगा वो गाड़ी लेके चला जाएगा, तो नाला में बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये
1: जी
0: मेरी आपसे

0: रिक्वेस्ट है।
1: जी, और एक बात कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि दुकानदार भी सिंगल यूज प्लास्टिक को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर हम लोग जाके अरे दे दीजिए एक थैला, कुछ नहीं होगा, एक ही तो है, बोल के जोर जबरदस्ती हम दुकानदार से वो ले लेते हैं, वो हैबिट क्या सही है?
0: बहुत गलत है
1: जी,
0: उसको बंद करना चाहिए। ये प्लास्टिक का जो थैली है उसको बिल्कुल ही बैन होना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि ये गलती भी नहीं है।
1: जी,
0: आप उसको मिट्टी में भी दबा दोगे ना, 20 साल बाद में वैसी की वैसी मिलेगी। इससे बहुत पोल्यूशन होता है,
1: जी
0: पशु भी उसको खा जाता है तो मर जाता है, तो पशुओं के ऊपर भी बहुत इसका अफेक्ट होता है।
1: खरीदारों को भी, जैसा जो ग्राहक हैं उनको भी, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने से बचना चाहिए।
0: बचना चाहिए, वो अपना घर से कुछ बैग लेके आइए,
1: जी
0: रोज का काम है, तो बाजार करने जाता है तो कम से कम एक अपना पैकेट में एक बैग छोटा सा वाला ले लीजिए, उसमें लेके चला जाइए,
1: जी
0: तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी प्लास्टिक। ये तो कस्टमर को सोचना है, दुकानदार नहीं सोच के कस्टमर को सोचना है कि मुझे ये प्लास्टिक यूज नहीं करनी है,
1: नहीं
0: लेनी
1: करनी।
0: नहीं है, उसको मना कर देना कि मुझे नहीं चाहिए,
1: जी, लेकिन
0: मैं
1: यहाँ
0: लेके आया हूँ, मेरा बैग उसमें लेके जाऊंगा।
1: जी
0: तो ऐसा सब मैं करूंगा, आप करेंगे
1: जी
0: तो हमें देख देख के और भी करेंगे,
1: जी
0: तो वो प्लास्टिक ऑटोमेटिक बैंड हो जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए हर आदमी को।
1: जी, और आप क्या मानते हैं कि जैसा स्कूल हो या कॉलेजेस हो, वहाँ भी हमारे जो बच्चों को हम पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वहाँ भी स्वच्छता को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, डस्टबिन प्रॉपरली कौन सा यूज़ करना है लेकर के, शिक्षा देने की ज़रूरत आप मानते हैं बच्चों को?
0: बिल्कुल,
1: जी
0: बच्चों को भी शिक्षा देनी है इसके बारे में
1: जी
0: कि डस्टबिन में जो भी कुछ भी खाएंगे पैकेट में जो आता है,
1: जी
0: कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह,
1: जी
0: तो बच्चों को बोलना है, टीचर को ये बात बोलनी है कि ये आप चिप्स का पैकेट खा रहे हैं उसको उस डस्टबिन में डाल दीजिए।
1: जी
0: सब बच्चों को ये शिक्षा देनी है। तो ये कहता हूँ कि एक पीरियड स्कूल क्लास में इसी चीज़, स्वस्थता का, स्वस्थ भारत का एक पीरियड होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा बच्चे जो अभी जो न्यू जनरेशन है ना, वो इसके बारे में दिमाग में पूरी बैठ जाएगी, तो वो साफ सफाई के बारे में बिल्कुल सोचते रहेंगे। इसे
1: जी, मतलब उनको स्कूली दिनों से ही वो चीज़ समझ में आएगी
0: सिखानी चाहिए,
1: और सीख भी लेंगे, और आप कहते हैं कि सिखानी बहुत ज़रूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है,
1: जी, चाहे उसके लिए एक सब्जेक्ट ही
0: एक सब्जेक्ट होना चाहिए,
1: इंट्रोड्यूस होना चाहिए।
0: एक पीरियड आधा घंटा का लीजिए ना।
1: जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और एक बात आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ और पूछना भी, कि जैसा कि हम सब अपने घरों में तो कोई भी प्लास्टिक हो, कचरा हो, अपने बाउंड्री के अंदर में तो यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं, कोई भी नहीं फेंकता है, लेकिन जब लोग अपने बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, तभी मानसिकता ऐसे बदल जाती
0: ऐसे
1: है
0: बदल
1: कि
0: जाती
1: यहाँ
0: है
1: वहाँ फेंक देते हैं।
0: वो, ऐसा नहीं समझते कि वो मेरा ही अपना घर को, दूसरा घर को अपना घर समझेगा,
1: जी
0: तब स्वस्थ भारत, स्वस्थ हापलूंग होगा। क्योंकि
1: जी
0: मेरे घर से कचरा लेके दूसरा घर के सामने फेंक दूंगा,
1: जी
0: वो तो मेरी वो ठीक नहीं है।
1: ठीक नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे डिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल द्वारा भी बहुत सारे टूरिस्ट जगहों को डेवलप्ड किया गया है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए हैं, और हमारे सीएम साहब की अगुवाई में सफाई को लेकर बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज इस पर काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम सबको मिल करके ये सोचना चाहिए कि अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने बाउंड्री से बाहर निकल के भी हर जगह हर चीज़ को, और ऑफिस, स्कूल, सभी जगहों को ये मेरा है, अपना है, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक
0: स्वस्थ स्वस्थ नहीं होगा।
1: जी पूरी तरीके से स्वच्छता लाने में थोड़ी दिक्कत
0: नहीं,
1: होगी।
0: हमारे चेयरमैन साहब भी, हमारे
1: जी
0: ईओ, ईओ साहब,
1: जी
0: वाइस चेयरमैन साहब,
1: जी
0: हमारा एसआई साहब, ये हर सप्ताह में इसके बारे में मीटिंग करते हैं
1: जी
0: कि अभी आप लोगों में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें जल्दी उठ के 4 बजे साफ सफाई करनी पड़ेगी।
1: जी
0: सब करते हैं, हम लोग उठ जाते हैं 4 बजे उठ के, पूरा रोड और सब सफा कर लेते हैं।
1: जी
0: तो वो भी बहुत मतलब जोर लगा रहे हैं इसके बारे में। आदमी का कुछ सोचना पड़ेगा, आदमी को, जब
1: और
0: तक पब्लिक नहीं सोचेगी तब तक ये नहीं
1: पूरी
0: सुधरेगा।
1: तरीके से जी, और ऐसा भी नहीं है कि हाफलोंग या डिमा हासाओ का है, बहुत साफ़ सुथरा है, और बाकी जगहों से,
0: बाकी जगहों से बहुत
1: और
0: साफ सुथरा है।
1: इसको ऐसे ही मेंटेन रखने के लिए, इसको और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए जन भागीदारी बहुत
0: बहुत
1: ज़रूरी है।
0: जरूरी है,
1: जी
0: बहुत जरूरी है।
1: हाँ, एक दो लोग भी कहीं, एक दो बच्चे जो भी ऐसा करते हैं, तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है,
0: जरूरत है,
1: तब हाफलोंग बहुत ही सुंदर हो
0: बहुत
1: जाएगा।
0: सुंदर हो जाएगा।
1: जी, अंत में आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आप लोगों वासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ
1: जी
0: कि आप लोगों को अगर स्वस्थ और साफ सुथरा रखने चाहते हो तो हमारा म्यूनिसपालिटी बोर्ड का आप कम से कम साथ दीजिए।
1: जी
0: हम साथ देने का ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ आके आप झाड़ू मारिए। अपना घर का जितना भी कचरा गार्बेज है
1: जी
0: वो हमारी गाड़ी आएगी या तो उसमें दीजिए।

0: या हम हमारा जो म्यूनसिपैलिटी बोर्ड का गर्वेज प्लेस है वहाँ पे आप डंपिंग कीजिए,
1: जी
0: इतनी आपसे निवेदन है। और दूसरी बात, मैं मेरी म्यूनसिपैलिटी बोर्ड के बारे में और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ
1: जी
0: कि हमारा जो हाउस टैक्स है वो नहीं मिल रहा है, वो कम से कम आप जो भी जिसका भी पेंडिंग है
1: जी
0: वो पेड कीजिए,
1: तो हाउस
0: मतलब
1: टैक्स हर हर किसी को अप टू
0: देना देना
1: डेट करना
0: चाहिए।
1: चाहिए। अब मुन्नी जी से आखिरी सवाल यही करना चाहूँगा कि आप अन्य सहेलियों को क्या कहना चाहेंगी?
2: बहुत अच्छा मानती हूँ सहेलियों को,
1: जी
2: सबको अच्छा ही कहता हूँ, सब साफ सुथरा रखो अपना अपना
1: जी
2: रास्ता, और अच्छा टोन को बनाना हम लोग को,
1: जी ये हमारी जिम्मेदारी है।
2: हमारी जिम्मेदारी है सबकी मिलके,
1: जी
2: अच्छा करेगा तो हम लोग को अच्छा सोचेगा सब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी बन जाती है। आज हम सबको मिल करके स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत बनाने में हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई। आज हमारे मेहमान से बात करके समझ आया कि सफाई सिर्फ म्यूनिसिपल बोर्ड या इन सफाई मित्रों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की साझी भागीदारी है। अगर हम कचरा फैलाना बंद कर दें तो इनका काम आधा और हमारा शहर दो गुना सुंदर हो जाएगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बातें साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम लोग का भी
1: थैंक यू सर। जी
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप भी अपनी सहभागिता निभाइए, कचरा डस्टबिन में ही डालें। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। अब आपके दोस्त सिद्धार्थ पांडे को इजाजत दीजिए। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम स्वच्छता में सहभागिता। सफाई मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया सिद्धार्थ पांडे ने। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। अब आपको एक गीत सुनाया जा रहा है। गायक कलाकार हैं रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज और हरिहरन की आवाज़ में एक गज़ल। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अपलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है एक ही फिल्म से गीतों का कार्यक्रम। आज की हमारी फिल्म है गुरु। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और इसकी संगीत में अपना योगदान दे रहे हैं AR रहमान। चलिए सुनते हैं फिल्म गुरु से कुछ गाने।

জড়িয়ে জড়িয়ে আরেকলো আরেকলো এক মুফ আরেকলো।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कुछ गाने। आज की हमारी फिल्म थी गुरु। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है। अब आपको सुनवाए जा रहे हैं समाचार संध्या, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्सपा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफ्सपा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
7: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi.com और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ. जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
9: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
10: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
9: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000

0: ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या, रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हफलन केंद्र से सुन रहे हैं।

0: आपकी गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं श्योलीनाथ और इमानुएल ट्यूलर की आवाजों में कुछ बांग्ला रविंद्र संगीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शिवलीनाथ और इमानुएल ट्यूलर के गाए रविंद्र संगीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है।
1: हेलो हफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलॉन्ग।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के हफ्तलंग केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत।

दोस्तों चलिए सुनते हैं अगला गाना महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म है वारिस।

दोस्तों सुनते हैं अगला गाना फिल्म तुम मेरे हो से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे।

दोस्तों चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, उदित नारायण और रंजना जोगलेकर की आवाज में। फिल्म है जाने तमन्ना।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही चित्र गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का फ्लंक केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। इसी के साथ ही समाप्त होती है आज की हमारी दूसरी सभा। कल सवेरे पहली सभा में आपसे फिर होगी भेंट। तब तक के लिए मैं मोतीलाल आपसे इजाजत ले रहा हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद।